है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

0: टीचर डन दिस सॉन्ग या
1: डांसिंग पागल है
0: क्यों
1: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग ट्रोल
0: बट व्हाई इट्स आइकॉनिक
2: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं काहे को पंगा लेने गए छोड़ दे आजकल जनता ना बहुत डेंजरस हो गई
3: बट इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट आवर वर्जन
0: दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नाउ यू आर गेटिंग मी
4: यू गाइस वांट ऑडिशन या
1: ट्रोल हो जाएंगे मत करो

के अनुसार ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपा कर एमजी गाड़ी में रखी गई। और मजे की बात ये है, ये कैश जिसे मिला वो पैसा उसका।